0: कैसी हो बेटा?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: तुम्हारी बहुत याद आती है।
1: मुझे भी आपकी बहुत याद आती है।
0: आप ख्याल रखना।

0: एनबीए र एनबीएल खेलेका खेलाड़ी मात्र समावेश गर्न पाइनेछ।
1: खेल हुने स्थान कसेरी खेल मैदान धुलेगौड़ा तनह हो।
0: खेल हुने मिति असोज 18 गतेदेखि 22 गतेसम्म, समय बिहान 8 बजेदेखि।
1: आयोजक शुक्ला गण्डकी युवा क्लब शुक्ला गण्डकी 4 तनह हो।
0: सम्पर्क नम्बर 98066 79 78, 98 4 49 41 273। खेल संयोजक भरत श्रेष्ठ, 98 2 71 31 565।

0: टीवीएस साथ छ हाम्रो।
1: सिम्स केयर गिभर्स ट्रेनिङ, केयर विथ कम्प्यासन, सर्भ विथ हार्ट।
2: सिप सिक्नुहोस्, भविष्य सुनिश्चित बनाउनुहोस्। सिटी भिटीद्वारा सम्बन्धन प्राप्त सिम्स केयर गिभर्स दुलीगौडामा सिटी भिटीको पाठ्यक्रममा आधारित 390 घण्टा तालिम।
3: हाम्रा विशेषताहरू:
2: अनुभवी एवं दक्ष प्रशिक्षकबाट प्रशिक्षण,
3: व्यावहारिक र प्रयोगत्मक सिकाई,
2: रोजगारको लागि मार्गदर्शन तथा सहयोग,
3: सिपमूलक गुणस्तरीय र प्रमाणकारी तालिम,
2: स्वास्थ्य क्षेत्रमा करियर बनाउन उत्कृष्ट अवसर। भर्ना गर्ने अन्तिम मिति 2083 साल भदौ 31 गते सम्म।
3: स्थान: सिम्स केयर गिभर्स, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौडा तनहुँ।
2: सम्पर्क 9856044343, 9841443688, 9841443688, 9560171773।
4: डोन्ट मिस दिस अपर्चुनिटी।
5: शुक्ला गण्डकी FM 97.6।

नमस्कार तथा शुभ प्रभात। आज विधि विक्रम सम्मत 2083 साल असोज महिनाको 20 गते मंगलबार अश्विन कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि अंग्रेजी नीति अनुसार अक्टोबर 6 तारीक सन् 2026 नेपाल सम्मत 1146। आज इन्दिरा एकादशी व्रत एकादशी श्राद्ध सूर्यदेव बिहान 5 बजेर 59 मिनटमा हुने